0: ठीक नहीं सी, किस्मत मेरी इन्हीं ठीक नहीं सी, पर
1: तेरी तो है उम्मीद नहीं सी, तो है
0: उम्मीद औखी सौखी जिन बीत रही सी, पर
1: तेरी तो है उम्मीद नहीं सी, तो है उम्मीद नहीं सी,
0: किस्मत मेरी इन्हीं ठीक नहीं सी, पर
1: तेरी तो है उम्मीद नहीं सी, तो है उम्मीद नहीं सी,
0: औखी सौखी जिन

दिल दे पहला टुकड़े हो चुके सी तूने वो टुकड़े भी तोड़ दिते जड़े मुश्किल ना दिते मैंने तेनू वो तोहफे भी तूने मोड़ दिते।